असंत मूर्ख अंत घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे संत मलेच मल पाए असंत निंदक

सबुर तेरे बनाई होए गण गुरु जी के पास होए स्वस्थ आकाश ब्रह्मा सत्स्वान ब्रह्मा कमल सुरे

कृता निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाए संत पापी पाप असंत मूड़े यार करे फिर संत मलेच मार पाप है असंत निंदक करे पा नानक नीच कहे क्या मारे न जावा एक जो तुम पावे सही परिपा।

इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ नरखीसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मछ पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खानी

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया, तुद बिन सिद्धि किनै न पाईया, कर्म मिलै नाहीं ठाक रहाईया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवार नहारा, आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख,

मेरा प्राण ससाई, हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संग।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्यम, जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए, ता कारिज को आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया, रहाव जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करिया।

अख वखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी।

रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे

तेरी अनिक करहै हर पूजा जी, तब तापह जपह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया

पाई रहाओ। सब तेरी तू सब नी त्याया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनों तू जाना ही सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोई। तू कर कर वेखह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरडै पहले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले।

साध संगत भज केवल नाम, शरण जाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ, जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करम मा, शरण परे की राखो शर्मा, जप तप संयम

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु, आप हाथ दै मुहे बचावहु, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करता।

पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बापतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार किस ही को हमारी सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी शिव कन को

भाव कही कूपाओ अंदज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दिनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ट दिखाए अचम भाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई दुष्ट चाह छव सकै न कोई।

मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहु उबारी, सर्व ठौर मोहु सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई, सुवैया पाए

मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानियो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो ही बखाने दोहरा।

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहे भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवां।

जिको पुंचै तिसका हुए उदारु। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु। तम संसार

वै हरिया तरस पया मेरा मत हुई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थी वै हरिया पौड़ी जिथै तू समरथ जिथै कोई नाही उथै तेरी रख अग्नि उदर माही सुन कै जमके दूत नाई तेरे छड़ जाए पौ जल विखमस गाहू गुर शब्दी पार पाही जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाही कल मैं

0: ना विसारियन। साध जना कै संग पव जल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माही बिदारियन। किस साहिब की टेक नानक मनै माही। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि। किस साहिब की टेक नानक मनै माही। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर
1: तुम पह अरदास जियो पिंड सब। तुम मात पिता हम बारक तेरे। तुमरी कृपा में कोई ना जान तुमरा अंत।

0: नानक तिस बलिहारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवां, हर बिसरत सदा खुआरी। ताको धोखा कहा व्यापै, जाको ओट तुहारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सत्कारयोग सत संग जीओ, सतगुरां दी अपार बख्शिश होई। संध्या वक्त दे समय सुखमणी साहब जी दे जाप संगती रूप च कीते, उस तो उपरंत रहिरा शब्द दे पाठ सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के आप संगतां ने सरवण कीते ने। अरदास विच शामिल होए हो, पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श कीता महाराज जी दा सरवण कीता। सतगुरु कृपा करन, साडा सारिआं दा गाविआ सुणिआ महाराज अपने दर ते प्रवान करन। इसे तरह गुरु चरणां ने जुड़ी रही है जी। बेनती है 11, 12, 13 सितंबर नूं गुरु घर दे विच 31 राग दरबार कीर्तन समागम हर साल कराए जांदे ने, इस साल भी कराए जा रहे ने। शुक्र शनि ऐतवार होणगे। आप संगतां दे चरणां च बेनती जरूर पहुंचण दी कृपालता करनी जी। 12 सितंबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा पहला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा, वह भी सब संगतां दे सहयोग नाल मनाया जाएगा। 13 सितंबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी गुरता गद्दी दिवस आ रहा, वह भी आप संगतां दे सहयोग नाल इत्थे मनाया जाएगा जी। 14 सितंबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का ज्योति जोत दिहाड़ा आ रहा, वह भी आप संगतां दे सहयोग नाल मनाया जाएगा जी। 17 सितंबर नूं अस्सू की संगरांद का दिहाड़ा, वह भी आप संगतां दे सहयोग नाल मनाया जाएगा। 18 सितंबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी के विआह पुरब के विषय के संबंध में हर साल बटाला साहब दूह संगत वालों गुरु घर अखंड पाठ साहब आरंभ किए जाते हैं। आव संगतां दे चरणां च बेनती, उस समागम विच पहुंचण दी कृपालता करनी। गुरु घर दीआं दो बिल्डिंगां नवीआं बण रहीआं ने, नॉर्थ हाल अते साउथ हाल, उहदे विच आव संगतां वध चढ़ के सेवा कर रहे। होर भी आप जी दे चरणां च बेनती, होर भी वध चढ़ के सेवा करिए तां कि गुरु दीआं खुशियां असीं प्राप्त कर सकीए जी। आओ, रात्रि दे दीवानां दी आरंभता हो रही है। पहला आरती कीर्तन करनगे सत्कारयोग भाई साहिब भाई हरप्रीत सिंह जी। इन्हां तों बाद चल रही लड़ीवार जपजी साहिब की कथा करनगे सत्कारयोग भाई साहिब भाई लखविंदर सिंह जी खालसा जी। आखिर विच लास्ट कीर्तन करनगे सत्कारयोग भाई साहिब भाई ओंकार सिंह जी। जरूर समा कढ के सतगुरां की गोद विच जुड़ बैठ के रात्रि दे दरबारां विच हाजरियां भरीए जी। होर जानकारी वास्ते गुरु घर के सकत्र साहब सरदार रजिंदर सिंह जी मगर साहब, उन्हां नाल तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उन्हां दा फोन नंबर है जी 408-712-4145। उन्हां कोल होर जानकारी लै सकते हो। अवरात्रि दे दीवाना दी कीर्तन दी अवरता हो रही, गुरु के लंगर तैयार ने, छके जाण दी कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

महाराज मेर करम जिन्हों के अंदर हासा महला पंजवा गुरु अर्जन देव जी चरण कमल की आस प्यारे जिन्होंने तेरे चरणा का आसरा बन जाए तेरे दर्शना की तांग बन जाए। कहिंदे ने फिर गुरु एक ना एक दिन उन्होंने निवाज लैंदा है जिवें जिंदगी भी आस है मां नूं बच्चियां दा आसरा है बच्चियां नूं मां प्यो दा आसरा है बंदे नूं जिंदगी दा आसरा है। हर किसी ने अपनी अपनी सोच अनुसार प्लैनिंग जिंदगी दी सोचियां होईयां ने बनाईयां होईयां ने कुल मिला के जीवन जिंदगी भी एक आस है आसरा है पर कल दा पता कुछ नहीं। पर सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने जेड़े अपने जीवन विच ये भावना लैके आउंदे ने सच्चे पातशाह नानक की अरदास सुनी जाए। धन गुरु नानक साहब जी महाराज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह पंजवें नानक कहिंदे ने मेरी ये अरदास है मेरे हृदय विच मेरे हृदय विच केवल नाम हृदय में दीजिए। इस हृदय विच होर सोचा ना होण होर ख्याल ना हो ईरखा द्वेष वड्डा छोटा ना होवे जे होवे तां तेरी याद होवे केवल नाम तेरे नाम दा आसरा होवे। सच्चे पातशाह जी कैसी बख्शिश कर रहे ने नानक की अरदास सुनी जे केवल नाम हृदय में दीजे। जदों कोई ऐसी भावना बना के हाजरियां भरदा है महाराज किवें ना किवें उन्हूं अपना दर्शन बख्शिश करते हैं। भावना विच कोई कमी ना होवे प्रेम विच कोई कमी ना होवे गुरु प्रति ते सतगुरु फिर उन्हां नूं खुशियां नाल निवाजदा है। तरस तेरे की प्यास मन दा गाओ जी।

जय कर कीर्ति आखिए करते का हो विचारो तित कर गावो सुहिला सिवर सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सुहिला हाँ वारी जित सुहिला सदा सुख हो रहाओ नित नित जीवड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तसदा ते कमन समार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन सिसड़िया जो हो वै साहेब से मेल घर घर हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन रागा समहला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्वे चसिया कड़िया पहरा थिति वारी माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश राग तना श्री महला पहला गगन में थाल राव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंद राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्दवा जंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूर्त न नायक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत भावै स्वारती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदन मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग का होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुरपा

0: ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ਸਹਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬੜਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਵੇਕ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪ ਕੀਨੂੰ ਆਪਣ ਬਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛੁ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ ਆਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆ ਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਨੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਕਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਪਿਹ ਗਤ ਪਾਹੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਣ ਨ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਯਾਰ ਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਈ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾਹੀ ਠਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਇਉਂ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਿਉ ਪਾਉ ਕਈ ਧਨੀ ਤ੍ਰਾਪੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟੈ ਅਕੇਲਾ ਜਿਉ ਬੁਆੜ ਤੇਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੋਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्टे कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए, पाया किरत न मिटे कोई, नानक जाने सचा सोए। सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहु दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब काश वरता तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह बिचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जानु से। सलोक तजहो सियानप सुर जनहो, सिमरहो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहो जाए। अष्टपदी मानुख की टेक वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बौर न कृष्णा लग गया है। मारै रखै इको आप, मानुख कै किश नाही हाथ, तिसका हुकुम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोई। उस्तत मन मैं कार निरंकार, कार मन मेरे सत ब्योहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहिलाकार, ले हे जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिय हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़ भागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर की गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गने संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछान ए तो ओत कियो, सोजी जाने नाम संग, जिसका मन मानया, नानक तिन है निरंजन जानया, गुर प्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कह तो, सर्व रोग त्यो हर जन रह तो, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ मैं सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिस की कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागै दुख। जिसको हर प्रभ मन चेते आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बूझिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असतूल, नह किश जन्म न किश मरे, आपन चले तो आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत राच थाप थाप, अविनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदर है तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप पय निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनों कृपा करै बड भागै, नाम जप तपावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए हुवै सो होए, करणे हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हों बने आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जन नहार, जाकै सिमरन उदरी है, नानक तिस बलहार। अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु न होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरा किश काम, गात नानक जापो एक हर नाम। ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਾਟ ਸੋ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ, ਜਾ ਸਭ ਕੇਸ਼ੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਦੀ ਆਦਰਬ ਹੈ, ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਾਹੇ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਜਨ ਗਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੇ ਹਉ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਆਰੋਗ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸ ਥੰਮਨ, ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਭ ਚਾੜ ਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗਤ ਨਿਸ ਤਰੈ, ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਜਿਉ ਮਾਹੋ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ੋ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਜਿ ਲਾਗੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਸੂਪ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੁਧ ਸਹਿਜ ਤਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੁਖਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸਲੋ ਪੀਪਾ ਤੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੇਨ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲੇਹ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲ, ਲਾਤ ਖੇਪ ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਤਰ ਗਹੇ ਸੋਈ, ਇਹ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਸਦ ਬਲੇ ਹਾਰੇ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ, ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਅਣਕ ਬਿਗੰਤੈ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਹਿਰਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਪਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਯੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਏ ਤਹਿ ਲੋਇ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਏਕੋ ਹੋਇ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛੁ, ਤ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰ ਸਨ ਅਸਪਦੀ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਮਨ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿਰਾਗ, ਮਾਨ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਏ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗੁਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਮਨ ਇਹ ਅਨਰਾਉ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੇ ਹੋਰ, ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਏ ਕਰਤਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀ ਸਰਗ੍ਰਸਥ ਮਹਿ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕਾ ਜਾਣੇ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ, ਚੰਦ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵਹਿ ਸੇ, ਤਹਿ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਊਚ ਨੀਤ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਬਿਰਕੀ ਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ, ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਹੇ, ਨਾਨਾ ਬਿਦਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ,
1: जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उतरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह जन, नानक चौथे पद मह जन गत पाए, रूप सत जाके सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत जन जाके दे प्रवेश, सत नृत बुझे जे कोई, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भावे सो वर्तिया, विस्मन विषम पै विस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरे संसार, जन का सेवक सोवट भागी, जन के संग एक लिविलागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच अष्टपदी, चरण सत सत परसन हार, पूजा सत सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पिखन हार, नाम सत सत ध्यावन हार, आप सत सत सवधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभु भक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, भूजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभु सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करन करावन तिन मूल पछानिया, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निर्भउ होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे सुमाना, बस तुमाहे लै बस गड़ाई, ताको भिन्न कहना जाई, बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानके, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक की मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारे, नानक सो सेवक साथ साथ सुमारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि गतमित कोए न लाखे, प्रभ के सेवको को न पहुँचे, प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मेहकल राखे, पसम करे लस्कर कोट लाखे, जिसका सास न काढ़ता आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करत व्यर्थे जात, मारे न राखे अवर न कोई, सर्व जिया का राखा सोई, काहे सोच करे हे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत एह मन तन तृपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नाही दृष्ट आया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृपताने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम, बोलो हो जस जेहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करहे भगत आत्म के चाए, प्रभ अपने स्यो रह सुमाए, जो हुआ हो सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पुछाने, तिसकी महिमा कौन बखान्यो, तिसका गुण कहे एक ना जान्यो, आठ पह प्रभ से हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन देहे, जिन जन अपना प्रभु पिछाता, सो जन सर्वथो का जाता, तिसकी शरण सर्व सुख पाव है, तिसके दर्शा पाव मिटाव है, अवर स्यानप सगली शार, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो हो सद पैरा। श्लोक। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी। सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी है, सतगुर सिख का हालत पलत सुवारे, नानक सतगुर सिख को जिय नाल सुमारे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को करकशु न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्य आवै, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एके आप नहीं कछु परम, सहज स्यानप लया न जाइए, नानक ऐसा गुरवड भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चनगत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवै, पार ब्रह्म की दरगह गवै, सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पति याने, पूरा गुर अथरो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हो संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पहुंचत परानी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत कहे किने न पाई, अनिक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह, सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, ए हरस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाही करे विनाश, जान के मन प्रगटे गुणदास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवको दे, मोह माया के संग ना लेप, मन महरा के हर हर एक, अंतकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे, तप्त माहे ठाड़ वरताई, अनद भया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंधे से, साधु के पूरन उपदेशे, पौ चुका निर्भौ होए वसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जपना मुरारी, चित पाई चुके परम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण वियोही, कला तार जिन सगली मोही, आप चरित प्रभ अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पुत रव्या रूप रंग, पै परगा साध के संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बले हारी। श्लोक। साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक इह तन सार। अष्टपदी। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत विसारहु, चरण कमल रित माहे उरतारहु, कर्ण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वथ, ए तन सांचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कुंट उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस सोवा को करह भली करनी, सा सोवा पज हर की सरनी, अनक उपावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दर गह परवान। मन प्रभु दो हर के नाए, देह दिस्तावत आवे ठाए। ताको विघन न लागे कोई, जाके हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। तत् विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवा गवन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरुदेव। यो रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण उधार। अनिक उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करहो मन लाए, मन वंशत नानक फल पाए। संग न चालिस तेरे तना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना। सोत मीत कुटुंब अरवनिता, इनते कहू तुम कवन सना था। राज रंग माया विस्तार, इनते कहू कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बीगाना, नाम विसार नानक पश्चताना। गुर की मत तू लेहि ईआने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करहो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे। आप जपहो अवरा नाम जपावहो, सुनत कहत रहत गत पावहो। सार पूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतर समैल, बिंस जाए होमे विख फैल। हो चिंत बसे सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। छाड़ स्यानप सगली मना, साध संग पाव है सच तना। हर पूंजी संच करो व्योहार, ईहा सुख दर गह जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सालाहा, एक सिमर एको मन आहा। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर है ओ प्रव्याप। अनिक विस्तार एक ते पै, एक आराध पराशत गए। मन तन अंतर एक प्रवराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अष्टपदी। जाचक जन जाचे प्रावधान, कर कृपा ते वो हर नाम। साध जनाकी मागो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदापुर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम ते आवो। चरण कमल च्यो लागे प्रीत, पंक्त करो प्रभ की नित नीत। एको एको आधार, नानक मागे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महान सुख होए, हरस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जान तृप्ता ने, पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग, उपचे चाओ साध के संग। परे सरनाम सब त्याग, अंतर प्रगास अंत लिवलाग। वडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर तेर निर्मल मत लई। जन को प्रभ हो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच्छ पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहा सद संग हजूरी। जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन मह राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिकते काटे, जन्म जन्म का टूटा काटे। गुर पूरे तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करोह ए काम, आन त्याग जपोह हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपोहो अवरह नाम जपावो। भक्त पाए तर ये संसार, बिन भक्ति तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम,

उरे कहो कि ने कुछ करा, आप भला करतूत अपनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत

प्रभु की उस्तत करहु संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो

आई, जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ जीत। जन्म मरण ताका दुख दिवारे, दुर्लभ देह तत्काल उदारे, निर्मल सोवा।

नानक भगता सदा विकास, सुनै दुख पाप का नाश, सुनै सतसंतोख ज्ञान, सुनै अठसठ का स्नान, सुनै पढ़ पढ़ पावह मान, सुनै लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विकास, सुनै दुख पाप का नाश, सुनै सरा गुणा की गाहा, सुनै सिख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावह राहु, सुनै हाथ होवै सुबाहु। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करना।

आधार मन्नै तरै तारे गुरसिख मन्नै नानक भवहै न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान।

तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोई।

जिसनु बख्शे शिव शाला। नानक पातशाही पातशाहू अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिये मुल भंडार, अमुल आवह अमुल ले जाहि, अमुल पाहि अमुल ला सुमाहि, अमुल धर्म अमुल दीबान, अमुल तुल मुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुल मुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए, आख वेद पाठ पुराणु, आख पढ़े करह वख्यान, आख बर में आख इंद, आख गोपी तै गोविंद, आख ईश्वर आख सिद्ध, आख केते कीते बुद्ध, आख दानव आख देव, आख सुर नर मुन जन सेव, केते आख आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे, ताक न सकह के जीवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आख बोल विगाड़, ता लिखी है सिर गावा रंगावा, सो दर के हा सो कर के हा, जित बह सर्व समा

गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले गावै जोत महाबल सूरा गावै खाणी चारे गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावै जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चितनाव नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेख की तापना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहु सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पात चोली ध्यान की कर है बिभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद नीलन आद नाथ जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाथ आप नाथ नाथी सब जाकी रित

आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस आसन लोय लोय भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बहु लख होए लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एतराहे पत पवड़ी।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨੇ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਤੋਜ ਕਹੀ, ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨੀਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤਿਨ ਕਹਿ, ਤੁਹੈ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ, ਨਮਸਤੁੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੁੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸ਼ੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸ ਜਬੇ, ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਚੰਤੁ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਣ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਝੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਭੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੂਕ ਹੈ ਅਸੂਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਵਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੀ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੀ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰਗ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੀ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ
नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानं सर्वं परनासी अनुपे अरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद करता अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग चेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं तले हैं पीते हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं कुजंग प्रिया चंद अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ती निदाने नमस्तुंग निर्नाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साहसाजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूपण आद मूर्त जौन पुरक पारु सर्व मान त्रिमान देव अपेवाद उदात सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेक वाद पुरख उदार मूर्त जौन आद सेक देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैलु अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जानहि जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पासु जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानि पुरतीन लोक चौदह के बिकह जग जा पीजे जाप वादेव नाद मूर्त थाप्य सब जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्वरच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अभेश अंग राग नारंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुखदाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंग नात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र ना जानहि जे रूप रंग अरेख परम भेद प्राण जाके नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन भांग उपमा नंगन भव प्रकाश निश्चिन नाश आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव मा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन भूतांगा बापांगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडन बाढ़ चाचरी चंद्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजंग प्रया चंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दाने चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन्मंग जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र
प्रति सैदि सैदरी सैकरी सै भगवती चंद्व प्रसाद कथते क्या चिज देश है क्या भिज भेष है क्या गंज कर मैं क्या भंज भर मैं क्या भिज लोक है क्या दित सुख है के अवतूत वर्ण है के विभूत करण है कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि असुख वर्ण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगतंग कृति है कि छत्रंग क्षत्रिय वर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आद देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक वे है कि गै भूल गै वह कि फूल गुनाह है कि साहनुसाह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी ध्यान है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र विष है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कली में कि परमं फही में कि आकल अला में कि साहिब कला में कि हुसन अल वजू है तो मामुल रजू है हमेशल सला में सलीकत मुदा में गनी मुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम में रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम में रजायक यकीन है अनिकल तरंग है अपेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवला काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनाम मित्र भंगी त्रिकाम मित्र वर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है छे जय छूत है कि नरकंग प्रणास है पृथुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अभंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है भूत है अतूत है अनास है उदास है तंद है अबंध है भगत है विरक्त है नास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है नित्य है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छन्त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छन्त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सूत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं श्री कै मितु अमी कै सदैव प्रभा है अजय अजय भगवती छन्त्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमें सुलसलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करी मैं कि राजक रही मैं करो जी देहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है किलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है गंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहसुल निवास है कि सर्बल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधिशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपांग है मद पार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड
अनपवनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अंशिज अंग असुन अपांग उपमा पार गतमित उदार जलथल अमांड दिस्विस अपांड जलथल महंत दिस्विस बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु इक्कै सुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन डट अपारा डीठ धर्म अत ठीठ कर मन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत व प्रसाद करुणालय है हर काल्य है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है कृता कृत है मृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है जपा कृत है मृता मृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम पर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलयकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आश्वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज लख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख नाम काम गाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासे सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासे करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चक्र चक्र वर्ती चक्र चक्र पुगते स्वयं पवसुभं सर्व

सदायांग संगे अपंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रत्ती बिन एक रत्ती के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप भली बिदन आवत शीस न जात बिचारे इते भये तो कहा भय भूपतंत को नागे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत टोल मृदंग नगारे गुंजित गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविक भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पश्चरे भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसिक है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिक है पौन आहार जति जत तार सबै सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत्ती बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाद सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बटे बरियार बचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सुएक दिवैया दानव देव फनेंद निशाचर भूत भवेक भुवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब ताप थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहुपुंज कपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र जिंदर निराद जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पत अंत पसे जम्फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पगते नर फिर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे भक्त ध्यान लगायो नाथ प्रियो लिये सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सु बैठ कैसे ही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूँ सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रपायो काहू लै पान पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो अरवाची दिशा में काहू पचा को शीस निभायो खूब तान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो खूब तान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबू आप हाथ दय मुहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सबै रण कुआ संघरिय
पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाऊं सो तुम थे पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाद है मुझे वरी है मरण काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारी पच्छा श्री आसु तुझ जू करे हो रक्षा राख लो हम रख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बान दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा ज्योति यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन पजायो आदंति कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पाट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरालम निरंकार निर्भकार निर्लंब वाद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुध है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के सजा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कई पूपा अंडर जेर से तज की नियुक्त भुज खान पौर रच दीनी कहूँ फूल राजा हव बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सिरट दिखाए चम भव आद जुगा स्वरूप सोयम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संघरो दुष्ट जिते उठो तुत पाता शकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार दे है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहि शुभ काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो ताके ताव तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट चाच सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुम्भारा काल वास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल भिक्षकुल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता श्री अस्तो जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकड़ना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय अर्ध सहस सुन तीन कही जय पाद्र सुदियस्त मीरवारा तीर स्पद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कु आंख तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न करो सब तो हे बखान्यो दोहरा

ना सुनी है, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिलियो सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु सवारी साध संग जीओ, आप जी वडभागी हो जो अमृत वेले गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के सतगुरां दियां खुशियां रहमतां प्राप्त कर रहे हो। गरीब नवाज सतगुरु जी ने कृपा कीती है, पावन दीवाना दी संपूर्णता ते आप जी ने अरदास विच हाजरियां भरियां हन। अज दे अमृत वेले दे श्री मुख वाक सरवण कीते हन, जो सोरठ राग विच भगत कबीर जी दी अमृत रसना तों उच्चारण कीते हुए सतगुरां दे पावन अंग 655 ते 56 उपर सुभायमान हन। भगत जी ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर यही उपदेश दिता है कि मनुख दे पास दुनियावी तौर ते भावें जितनी मर्जी वड्डी विद्या होवे, जिन्ना मर्जी वह सूझवान सोचा रखण वाला विचारा रखण वाला होवे, पर जे उहदे पढ़े सुने विचारे तों बाद भी उहदे अंदर टिका नहीं, उहदे अंदर सहज नहीं, उसनू परमात्मा दे प्रति प्रेम भावना नहीं जागी, तां उसनू गावार ही समझिया जाए, उसनू मूर्ख ही समझिया जाए। क्योंकि असल सियानप असली विद्या असली समझ यही है कि जिसनू संसार विच विचरदिआं वाहिगुरु परमात्मा दे नाम नाल प्रीत पै जाए, वाहिगुरु की कृपा नाल हिरदे विच टिका सह जा जाए, उही असली सियाणा है, उही असली चतुर है, उही असली पढ़िया लिखिया मन्निया जांदा है। सतगुरु जी कृपा करन सभना नूं दरों करों नाम दा गुरसिक्खी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन जी आप जी के चरणों में बेनती है कि सितंबर 11, 12 ते 13 नूं जो साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश पुरब 12 सितंबर नूं आ रहा है, उहदे संबंध अंदर राग दरबार प्रारंभ होएगा, जिस विच गुरु घर दे कीर्तनी आप जी नूं इलाही बाणी दा कीर्तन रागबद्ध बाणी विच सरवण करवाउणगे आप जी ने। वध चढ़ के हाजरियां भरनियां हन 27 सितंबर नूं सतगुरां दे पावन प्रकाश पुरब की खुशी अंदर नगर कीर्तन भी निकलेगा, जो सतगुरां दे पावन दरबार दे गुरु घर की हदूद दे विच ही प्रभात फेरी के रूप अंदर कह लिए नगर कीर्तन होएगा। सो आप जी ने हाजरियां भरनिया हन 27 सितंबर नूं भी। आओ प्यार सहित हुण इलाही बाणी का कीर्तन भाई साहब भाई लाखन सिंह जी और उन्हों का जत्था आप जी सरवण करवाएगा जी। भुला चुकां दी खिमा, समूह संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा।

जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझाता है। सतगुरु संतों का धर्म गिरतवाओ, त्रै तेरा जते का जोर गिरतवाओ।

हे गुरु साहिब जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अपार अनंत गुर अवगत अलख अपेव पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतगुर नानक देव सतगुर नानक देव देव देवी सब त्यावे नाद बाद बिस्माद राग रागुण गुण गावे सुन समाद अगाद साध संगत सपरंपर सपरंपर अवगत अलख अपेव आगमित अपरंपर अमें दृष्ट शुभ कराय हर अग पाप सकल माल काम करो दियार डोब मोह वास कर सब बाल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नावन दरियाओ जन्म हम कालक धोवै सो कहो टल गुर सेविया अह निस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हर की वडियाई हो आख ना सक हो मूर्ख मुग्ध नी जान जन नानक को हर

चिंद मन अंतर की उत्तर है चिंद तेरे मन दिया चिंता जड़िया ना वो सारिया खत्म हो जाएगी तेन चिंता जड़ी ना वो कोई नहीं रहेगी। तो एक गल याद रखे गुरु की बाणी का फैसला है कि सतगुर तू बिना दम दम नाल सहीदा नहीं हो सकता। सतगुर तू बिना दम दम नाल जपे तुर करते हर प्रभ लिखे आविण सतगुर चेतिया ना जाए। तुरों हर प्रभ वाहिगुरु करते ने लिखा है कि जे तेरी खाश होवे फिर सतगुर पूरे अख टै पई कि सतगुरु मैनू भुलदा है तू मैनू याद नहीं आता मेरी जिंदगी च ओ घड़ी लिया मेरी जिंदगी च ओ छिन लिया। कई बारी ना सानू समझ नहीं आती तो असी किंतु कर देने और साडे मेरे ना कई बारी विचार भी होई है। मैनू कहिंदे जे इक पंक्ति है गुरु गोबिंद सिंह दसवीं बाणी की वह एंटी नहीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में पढ़ो कहिंदे एक चित एक छिन जे ध्यायो काल फास के बीच न आयो। कहिंदे इसे ते एक छिन नहीं आख्या तो सुखमनी साहब सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद यानी इहदा इह मतलब नहीं इहदा मतलब है कि वह छिन साडी जिंदगी च आ जाए सतगुरु जिस छिन दे आउण नाल मुड़ के मेरा स्वास स्वास तेरा नाम जपन लग वह छिन मेरी जिंदगी च लिया वह छिन नूं लियाउण वास्ते गुरु कोले जाण दी लोड़ ਉਹ ਸਿੰਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕੋਠਰੇ ਮੇ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਠੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ एक परम कोठी है जिन्हों सिर घर बैसो हर जर प्यारे कहने निज घर महल पाओ सो उसकी विचार कर ते उथे पहुंचने वास्ते तेनू गुरु की लोड़ है। ते भगत जी कहते मैनू वस्तु मिली है कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार गुरदीनी बस्त कबीर को लेहो बस्त समार। कबीर कहते मैनू परमेश्वर ने वाहेगुरु वस्ती बख्श दिती है ओरी बख्शिश करन करके कबीर साहब कहते हुण विसरदा नहीं हैगा ते हमेशा रब का प्यार दुनिया का भला करता वह वंटदा है। ते कबीर साहब ने आख्या संसार नूं वड्डा कबीर दी संसार को कबीर ने संसार वंड शुरू करती लीनी जिस मस्तक भाग यह नहीं कि भागा बनने लगे जिन्हें वह वस्तु ले ली वो मथे दे भाग बन गए जिन्हें नहीं ली वो दे मस्तक नहीं बने है। कबीर साहब कहते मैं वंड रहा लै लेकिन संसार इस पासे नहीं संसार की कर रहा है संसार नाम छड़ के कुछ होर ही पढ़ रहा सी विचार रहा सी। ते कबीर साहब ने सवाल खड़ा करता क्या पढ़ी है कबीर साहब कहते की पढ़ रहा है ये सोच के पढ़ की रहा है ये नहीं हैगा कि पढ़ना नहीं हैगा पढ़ ओ रहा जिदे नाल समाज दे विच नफरत फैला रहा है पढ़ ओ रहा तेरे किसी काम नहीं आना तो जिदे कहना रचे हुए ना इस घर चो आवाज लख लख बर में वेद पढ़ एक अखर भेद ना जाता। ते जिस बर्मा की गल करदा भी चार वेद लिखे उन्हें ਉਹ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਬਰਮਿਆਂ ਨੇ

ब्रह्म भो ब्रह्म पाओ मोह कटियो गुरु बचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन हुए मन मेरा आहंग बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडभागी नानक हर पावो केदारा महला पंजवा हार बिन जन्म अकारथ जात तज गोपाल आन रंग रचत मिथ्या पहरत खात रहाओ धन जोबन संपै सुख भुगवै संग न निबहत मात मृग तृष्णा देख रचियो बावर द्रुम छाया।

दीनानाथ करुणापत स्वामी अनाथा की नाथ रहाउ। सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह निबहत जम कै पाथ। नाम निदान गाऊ गुण गोविंद उदर सागर के खात। शरण सुमरथ अकथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ। नानक दीन धूर जन बांचत मिले लिखत धुर माथ। केदारा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

प्रभ चरण कमल रसाल नानक गाठ बाद तरी केदारा महल्ला पंजवा प्रीतम बस्त

रहाओ। अधिक गर्त संसार सागर, कर दया चार हो तोर। संत संग हर चरण बोहित, उतरते लै मोर। गर्भ कुंट मह जिन्हें धारियो, नहीं बिखे बन मह होर। हर सकत शरण सुमरा।

वह तिहकत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया जैसे

गुण अचुत सदा पूरण नह दोख व्यापह कली रहाओ गुर बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत नहली प्रभ एक अनिक सर्वत पूरन बिखे अग्न न जली।

संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरख विधाता, घट घट नदर निहालिया, जो सरनी आवै सर्व सुख पावै, तिल नहीं भन्ने घालिया।

है जल बिन मर पाई हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चात्रिक बूंद प्यासिया कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण प्रगासिया हर दर्स मन लागा दिन सुसुभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत शोभा पावे दर्श बिहू ना साध जन खिन टिकन न आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु न जाए निखेदिया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक न मावे ओ कृपाल नानक के स्वामी हर चरण संग सुमावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारी निर्गुण नीच अनाथ मैं नहीं दुख विचार निर्गुण नीच अनाथ मैं नहीं दुख विचारे नहीं दुख विचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरध बखानिया भगत वचल सुन अंचलो गहया घट घट पूर समानिया सुख सागर पाया सहज सुपाया जन्म मरण

विवर्जित हर पद चीनै सोई रहा राजगुण तम गुण सतगुण कही है एह तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीनै तिन ही परम पद पाया तीर्थ वर्त नेम सुच संजम सदा रहै नहीं कामा तृष्णा अर माया भ्रम चूका चितवत आत्मा।

रहा साचे लाई तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपै रतन जवाहर मानिक आपै है पासारी आपै दह दिस आप चलावै निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पैडा ज्ञान गोन भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संतो निभ

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे अस्त चरम दिष्टा के मुंदे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ राम न जपो कवन भ्रम भूले तुम ते काल न दूरे अनेक जतन कर इहो

जात सुभाव है सतगुरु भेट है, एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते, फुलवत देह के आने कहो कबीर जय राम न चेते, बूढ़े बहुत सियाने टेढ़ी पाग टेढ़े चले, लागे पीरे खान पाऊ भगत स्यों काज न कछुए, मेरो काम दीवान।

इतनक खटिया गठिया मटिया सांग ना कच ले जाए राव। देहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लव संग माए मरहट लग सब लोग कुटुंब मिलो।

बहरे करण अकल भई होछी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझिया, रह उदास आस निराशा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिवलागी। पैरो महला पहला, पूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करन पय बहरे, मनमुख नाम न जानी, अंदुले क्या पाया जग आए, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाई रहा, जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पए कदे हो हे नानी के, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मिलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अनको दर घर कबहु न जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। पैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल फाही, दिन सजंजाल गवाया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिने हो जग तू पाया। मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रहाओ। ऊंदो कवल मन मुख मत होची, मन अंदे सिर तंदा, काल बिकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंदुले, शब्द सुरत नहीं पाई, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंदलो तंद कमाई।

आई मन रे राम भगत चित लाई है, गुरमुख राम नाम जप हिरदय सहज सेठी घर जाइए।

को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी, तंदा करत सगली पथ खोवस, परम न मिट सगवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कब ही, अंधले तंद पसारा, अकुल निरंजन।

कहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे, संध्या कर्म तिकाल करे, बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे, राम नाम बिन शांत न आवे। जप हर हर नाम सुपार करे, जटा मुकुट तन

सतगुर प्रसाद। जात का गर्व न करियहु कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा, इस गर्व ते चल है बहुत विकारा। रहाओ

कहो बिद पांडे कड़ै कुमारा, पंच तत् मिल देही का अकारा, घट वध को करै बिचारा। कहत नानक इहो जीव कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त न होई। पैरो महला तीजा, जोगी ग्रही पंडित भेख

लगै कुए जमै काले ते छूटै सोए कहत नानक जन जागै सोए ज्ञान अंजन जाकी नेत्री हुए पहरो महला तीजा जा कौ राखै अपनी सरनाई साची लागै साचा फल पाई रे जन कैस्यों करो पुकारा हुक्मे हुआ हुक्मे वरतारा रहाओ एहु आकार तेरा है तारा किन मैं बिनसै करत न लागै बारा कर प्रसादिक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया कहत नानक मार जीवा ले सोए ऐसा बूझो परम न भूलो कोए पैरो महला तीजा मैं कामण मेरा कंत करतार जेहा कराए तेहा करी सिगार जा तिस भावै ता करे भोग तन मन साची साहिब जोग रहाओ पुस्तक निंदा करे क्या कोई जा आपे वरतै एको सोई गुर प्रसादी पिरम किसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई पंत नानक करे क्या कोई जिसनु आप मिलावा जिसनु आप मिलावै सोई।

निज घर वसै सहज सुभाई, गुरमुख नाम वसै मन आई, आपे वेखै वेखन हारु, नानक नाम रखो उरतारु। पहरु महला तीजा, कल युग में राम नाम उरतारु, बिन नावै माथै पावै चारु, राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाउ। राम नाम जन पाल है सोए, पूरे गुरते प्राप्त हुए,

गुरमुख राम नाम चित लाया, ज्ञानंजन सतगुर ते हुए, राम नाम रव रहे आते हो लोए।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई।

पावे साई पलिका असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख गड़बड़ हत्या कमाए संख पापी पाप असंख कूड़े आर कर संख मलेच मार पाए असंख निंदक

निस्तार निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गड़बड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आ गए संत मलेच माल पाए असंत निंद

करनी है विचार क्या अब ते सोहन पंच प्रवान जबरी कर्म सोवे कच्छ पाई बुद्ध पाए नानक गया कर्म खंड का

कहते कहते रत्न तू हम कितिया पानी कितिया पानी कहते पाप सरेंदर कितिया सुक्ति नानक अंत न अंत ज्ञान अंत में ज्ञान परचन।

का पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वत्या कमाए संख पापी पाप असंख कूड़े आर करे खुदाए संख मलेच मल पाखाए असंख

कहते हैं उदान मन के से कितर संतुंद कितिया पानी कितिया पानी कितने पाप कितिया भक्ति नानक अंत न अंत ज्ञान अंत में ज्ञान परचन।

निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध कोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार अशांत मलेच माल पाठ खाए अशांत निंदक

निस्तार निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर रहम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवड हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे सुधाए अशांत मलेच माल पाठाए अशांत निंदक

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैलम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर करता है अशांत गलवड हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे बुरा है अशांत मलेच माल पाठ खाए अशांत

ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण कत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दम एक शब्दम जेका जाना पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्णन सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा वास देव दस्या जेको जाना पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पढ़िया हो वह गुरंकार उमी साधना मारिए जेहा का लेकालना तो वे हो न उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जिदर के गया हारिए पढ़िया

कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त ना होई आसा। पहला पूत पछेरी माई गुर लागे चेली की पाई एक अचंभ्यो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई। रहा जल की मछली तर पर बे आई देखर कुतरा ले गई बिलाई तरदे वैसाई ऊपर सूला तिनके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चर पैस चरा बन जाई बाहर बैर कौन कर आई कैद कबीर सोइस पद पूजे राम रमत जे सब कुछ सूजे। ब्याई चौदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जी को तिपदे अठ दो तुके सत एक तुका एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उधर

उतार चरायो कैसे खसम हमारे, टूबा मण मैं काशी कुजलाह भुजो मोर गे आना, तिमसो जाते भूपत राजे हर्ष्यो मोर ध्याना आसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समारे।

कारफासन अमुक्त चेते कनक कामन लाग कर विचार विकार पर हरतन तारण सोए कोक मिर्जग जीवन ऐसा दुखिया ना ही कोई आशा जब मैं रूप किए बहुत तेरे अप

बचनी में पाई हर की कथा अनाहद पाणी हंस दो हीरा ले पछानी राव कौक भी हीरा रस देख्यो जग में रिहा समाई गुप्ता हीरा प्रगट प्यो जब गुरु गमदी याद खाई आशा पहली कूप कुजात पुलखनी सौरे पई बुरी अब की स्वरूप सुजान सुरखनी सहजे उदर तरी पैसरी मुई मेरी पहली।

दोख विनाश पांच दोख साध जा मैं ताकि केतक आस माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलीन राव त्रिगत ज्योन चेत संभव पन पाप सोच मानुख अवतार दलव तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल फास अब्द लग गए कछु न चले उपाय रविदास दास उदास ताज परम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरण परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तिन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जन संत से देवा देव संत ची संत संगत संत कथा रस संत प्रेम माझा दीवे देवा दीजा देवा देव राहु संताचरण संत चो मार संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंता मन लखी जणी लखावो संत पापी सन रविदास भण जो जान सो जान संत अनंत अंतर नाही संत अनंत अंतर नाही आसा तुम चंदन हम अरेंड बापरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते उच पै है गंध सुगंध निवासा माधो सत्संग संत तुम्हारी हम अवगुण तुम उपकारी राहो तुम मुख्तील सुतूल सुपेस पील हम अपरे जस कीरा संसंगत मिल रही है माधो जैसे मधुब कीरा जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा राम नाम की सेवना कीनी कह रविदास जी मारा सा कहाँ पैहो जाओ तन पैहो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरविंद पवन मन पान करत पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपत पटल माया धन ता मैं मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बाद्यो तेरो जन कह रविदास छुटवो कवन गुण आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर जागर जन्म जन्म के काटे फागर निमित नाम देव दूध पियाया तो जग जन्म मरण संकट नहीं आया जम जम दास राम रंग राता यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौर्यो फिरत है राव जब कछला पावे तब गर्व करता है माया गई तब रोवन लगता है मन बच क्रम रस कसै लोभाना बिंस गया जाए कहूं समाना कह रविदास बाजी जग भाई बाजी गर सौ मोहे प्रीत बने आई आसा बाणी धन भगत धने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमत फिरत ब जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लव दराता मन बिसरे प्रव हीरे राहो बिख फल मीठ लगे मन उचरे बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार न जान्या गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती जन्म मरण फिर तान्या जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जल फंद परे बिख फल सांच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया ज्ञान ध्यान मान मन एक मैं प्रेम भक्त प्राणी सुख मान्या जान्या तृप्त गाने मुक्त पै जो समाय समानी जा कह शली प्रभ पहचान्या धन धन पाया धरनी धर मिल जन संत समान्या महला पंजमा गोविंद गोविंद गोविंद संग नाम दियो मन लीना अर्धाम कोशी पर होयो लखीना राव बुनना तनना त्याग कह प्री चरण कबीरा नीच कुला जुला हराव पैहो गुणी गहीरा रविदास भगवंता ढूर नित्यागी माया प्रगट होआ सा संग हर दर्शन पाया सहनाई वितकारिया कर कर सुनिया हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गणिया
ਏਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ ਰੇ ਚਿਤ ਚਿਤ ਸਕੀਨਾ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ ਜੇ ਧਾਵੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਈ ਰਾਵ ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਐਸਾ ਖਰਮਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਕੁੰਭੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ ਪੰਖੀ ਪੰਖ ਖੀਰ ਨਿਤ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਾਤਰੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ ਆਸ਼ਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ ਰਤੇ ਸੁਖਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਤੀਏ ਰਾਓ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਾਦਰ ਵੇਸੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਿਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਪਰਬਤਕਾਰ ਪਾਰਾਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਜਿਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਪਨੈ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬਖਸੰਦਗੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਖੈਰ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ ਆਸਾ ਬੋਲੇ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਹ ਲੱਗੇ ਤਨੋ ਸਿਖਾ ਕੰਨੇ ਮਾਣੀ ਗੁਰ ਘਰੇ ਆਜ ਮਲਾਵਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ ਰਾਹੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਐ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਗਵਾਈ ਵਜਾਈਐ ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ ਜੇ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ ਛੱਲ ਕੰਧੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ ਕੰਚਨ ਬੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਤ ਚੀਰਿਆ ਸੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਆ ਜਿਤ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ ਕੱਤਕ ਕੂੰਜਾਂ ਚੇਤ ਡਾਓ ਸਾਵਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਿਆਲੇ ਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਾਹੜੀਆਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੇ ਮਨੋ ਗਢੇਂਦਿਆਂ ਛੇ ਮਾਏ ਤੜੰਦਿਆਂ

सहे निक्योंकार सतनाम कथा प्रख निर्भर निर्वैर काल मूर्ता योनि सह अंगुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला जप देकर पहला तेरा नाम करी चरणाठिया जे मन औसा होए करणी कुंगूजेर लय घट अंतर पूजा होए पूजा कीचे नाम त्याजिये बिना मैं पूजना होए राव बाहर देव पखालिय जे मन तो वकोए झूठ लय जी असमान जी है मुख प्याणा होए पशु मिले चंगिया खड़ खावे अमृत दे नाम भी होने आदमी त्रिक जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर न जाने हो नित सारे संभाले जो देवे सुखा बना को नानक सच्चा है गुजरी महला पहला नव कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ पसार ताको अंत न जाई लखना आवत जात रहे गुबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण धार जाकी भक्त करे जन पूरे मन जन सेवै गुर विचार रहा और आप सस दीपक जाके त्रिपण एका ज्योत मरार गुरमुख होय सोएन निर्मल मनु खरण धार सिद्ध समाध करे नित झगरा दोहलोचन क्या हेरे अंतर ज्योत सब धुन जागे सतगुर झगरन वेरे सुर नरनाथ बेअंत जनी सचै महल पारा नानक सहज मिलै जग जीवन नदर करो निस्तार राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिगर हा जीवना जित हर प्रीत न पाए यत काम हर विसरै दूजा लगे जाए ऐसा सतगुर सेविए मना जे सेविए गोविंद प्रीत उपजाए और विसर सब जाए हर से चित गहर है जरा का भाव न हो गई जीवन पद भी पाए राव गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप गया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय ही बिन भागा ऐसा सतगुर न पाईया जे लोचे सब कोई कूड़े की पाल विचों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओ सेवक सेवा करे गोरे आगे जियो तरे सतगुर का पाना जित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म व्यर्था जाए जी हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी को प्रसाद मेरा मन भीजे हा सेव बनी जियो राव हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हार मेरा भारी हर की मैं भुख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साख अंत होए सखाई हर बैन होर रास कूड़ी है चलदिया नाल न जाई हर मेरा धन मेरे साथ चल जहां हो जाओ तै जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक का पाणा हुआ कहना कछु ना जाई गुजरी महला तीजा जग में नाम दुलभ है गुरमुख पाया जाए बिन नामे मुक्त न होवी विखो को व्यो पाए बलिहारी गुरे अपने सत बलिहारे जाओ सतगुर मिली यार मन वसै सहजे रह समाए राओ जां भौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैरागे ते हर पाई हर सिउ रह समाए से मुक्त जे मन जिणे फिर धात न लगे आए दसवें द्वार रहत करे त्रे भवन सो जी पाए नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए हे कारण करता करे ज्योति ज्योत समाए हे गुजरी महला तीजा राम राम सब को कहे कह राम न हो ए गुर प्रसादी राम मन वसै ता फल पावे कोई अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हार तिस कदे न विसरै हार हार करे सदा मन चीत राव हृदय जिन कह कपट वसै बाहुर संत कहाए तिसना मूल न चुकई अंत कहे पछताए
अनेक तीर्थ जे जतन करे तांतर की हम मैं कदे ना जाए जिस नर की तबदा ना जाए धर्म राय तिस देश जाए कर्म होवै से होई जन पाए गुरमुख बोझ कोई नानक विचों हम मैं मारे तार भेट सोई गुजरी महला तीजा इस तिस जन सांत सदा मत निचल जिसका मन गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चितलाए हर चेत चेत मना जो छ सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पावै पीवित रह सदा सुख होई राव सतगुर भेटे ता पारस होवै पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीख्या देवै साच बुझाए विण पारसै पूज ना होवई विण मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए ज्ञानी अंधा किसो मार्ग पाए नानक निर्ण नदरी किने किशु न पाई है जिस नदर करे सो पाए गुरप्रसादी देवड़ियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कासी मत उपजै ना कासी मत जाए सतगुर मिलिए मत उपजी ताए सोची पाए हर कथा तू सुन रे मन शब्द मन वसाए ए मत तेरी थर रहे ता भरम विचों जाए राव हर चरण हृदय वसाए तू कर विखोवै नास पंच भू आत्मा बस करे ता तीर्थ करे निवास मन मुखे मन मुग्ध है सोजी किछु न पाए हर का नाम न बुझे ही अंत गया पछताए एव मन कासी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बजाए

कार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता के वासा वहां छोड़ धर्म में आया चित्र साहब सुंदर भाग मंदिर संगना का सुन जाया अवर साव मिथ्या लोभ लभी गरपूरे दियो अर नामा जी को हवस फबी रहाओ कश्मीर बंदव सतपाई सांग बंता रच रहस्या जबांती और सदाए बणद्यो है उन पेखत ही काल गरसया कर करन अर्थ व्या जी सम पै सुना रूप पर दामा पहाड़ी को पहाड़ा मिलया हो सगल पयो बेरा न है वर गैवर रथ संभाए गहो कर कीने मेरे जब ते होई लांबी ताई चले नाही एक पैरे नाम धन नाम सुख राजा नाम कुटुंब सहाई नाम संपत गुर नानक कौ दीन उमरे न आवै जाई गुजरी महला पंजमा तिपते घर दूजा क्यों कार सतगुर प्रसाद दुख बिनसे सुखिया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निधान सतगुर दड़ाया बिनस ना आवै जाई हर जप माया बंधन टूटे पै कृपाल दयाल प्रभ मेरी साध संगत मिल छूटे रहाओ आठ पैर हर के गुण गावै भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे निराला करने हार बिछाता जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जगत बणियाई कौ नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कह न जाई गुजरी महला पंजवा दोप दे घर दूजा क्यों कार सतगुर प्रसाद पितत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कार वर्ण जात को छूछे नाही बादशाह चनरवारो ठाकर ऐसो नाम तुम्हारो सगल शिष्य को तनिक जय जन को अंग निरारो रहाओ सासंग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधार हो नाम देव तृष्ण त्रिलोचन कबीर दास रो मुख पैव चमियारो गुजरी मला पंजमा हे नाही को बंजन हार हो जन कवन पता से ब्रांच हर सगल मोन जन ज्ञान सकाए गता प्रभ की अगम काद कथा सुनिए अवर अवर वेद बुझिए बकन कथन रहता राव आपे भक्ताप स्वामी अपन संगरता नानको प्रपूरे वह पेख्यो जतर कथा गुजरी महला पंजमा मतम सूरत सियाण जन को कछु न जन को कछु न आयो जय जय

वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करे से जन सोने हर तिन कै संग मिलाए।

मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जै खिचत खिंचे तह जाए। नानक हसी कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए। पौड़ी तिस आगे अरदास जन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाव सदा तियाया संत जना के संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन नेह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत म्या ला उचिया घर उचा निणा महल भगती घर सराए सज्जन पाहो पाहो बरस ना ता बरस घना बौड़ बरसै काहे। नानक तिन बलिहार नै जिन गुरमुख पाया मन माए। महला तीजा मिठा सो जो पाउंदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिया जा को आप करे परगास। पौड़ी प्राभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तो दतियाई जी।

प्रेम पटोला तैसा दिता ढक्कण कूपत मेरी दाना बेना साई मैंडा नानक सार न जाना तेरी महला पंजवा तैं दै सिमरन हाप के छिलदम बिखम न डिठम कोई जिस पत रखै सच्चा साहिब नानक मेट न सकै कोई पौड़ी होवै सुख घणा दै त्याई वञै रोगा कान हर गुण गाई अंदर वरतै ठाड़ प्रभ चित आई है पूर्ण होवै आस नाए मन वसाई है कोई न लगै बिघन आप गवाई है ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाया तिन पाए सबे थोक जिस आप दिवाई है तू सबना का खस

तेसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जिन त्याया कसम तेन सुख पाया। सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्म बुझने हाल खसम फुरमाया। जिसोवा कृपा जिसोवा आप कृपा, सुनह परमाया। जो जो दिता खसम सोई सुख पाया। नानक जिस दयाल बुझाए हुक्म मित, जिस बुला पुलाए आप मार मार जमै नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिंटिक न दिते, प्रभदास का दुख ना खाव सकै फड़ जो नी जुते। मथे वाल पिछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगै बिलाणिया नरक कोर सुते। कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते, श्लोक महला पंजवा। राम जपो वड भागी हो, जल तल पूरन सोए। नानक नाम ते आई है बिघन न लागै कोए, महला पंजवा। कोट बिघन ते सलागते, जिसनो विसरै नाओ। नानक आन दिन बिलपते, ज्यों सुंजै कर काओ पौड़ी। सिमर सिमर दा तार मनोरथ पूरिया, इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया। पाया नाम निदान जिसनो पालदा, जोत मिली संग जोत रहा कालदा। सुख सहज आनंद बुठे तित घर, आवन जान रहे जन्म ना तहा मार।

आवद सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूड लुकई है, हार बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नाकन टूटे कादन, कोदो को पुस खई है, रहाओ सारो दिन डोलत बिन मैया, अजो ना पेट अगई है, जन भगतन को कह न कहो न मानो, कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो, अनेक जोन परमई है, रहत जन्म खोयो प्रभ बिसरियो, यह अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप, ज्यो गत बिन रहन बिहाई है, कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछताई है। गुजरी घर तीजा मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बारिक कैसे जीव है रघुराई, तन नाम बुरना सब सजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जाब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरह राम स्नेही, ओछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लहो मैलाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। गुजरी श्री नाम देव जी के, पदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो राज देह तक मन बढ़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या घट जाई, तू हर पज मन मेरे पद निर्वाण, बौर ना होए तेरा आमन जान रहाओ। सब तय उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, सतगुर मिले ता सहसा जाई, किसो पूजा किसो पूजो दूजा नदर न आई। एक है पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर तरिया पाओ, ज्यो देव त्यो पी देवा, कह नाम देव हम हर की सेवा। गुजरी महला पहला मलै न लाछ पार मलो, पर मलियो बैठो री आई, आवत कि न पेक्यो कमने जाने री बाई, कौन कह किन बुझी बूझी है, रमैया आया कुल री बाई रहाओ। जो आकाश है पंखियलो, खोज निरख्यो ना जाई, जो जल मा जाय माछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। जो आकाश है कड़ू कड़ूवलो, मृग तृष्णा भरिया, नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती न जरिया। गुजरे श्री रविदास जी के, पदे घरती जाए ओंकार सतगुर प्रसाद। दूध सा बछरा थनो बिटार्यो, भूल भवर जलमीन बिगार्यो, माई गोविंद पूजा कहा लचरावो, अवर न फूल अनूप न पावो रहाओ। मैला गर बेरे है पुयंगा, बिखे अमृत बसा एक संगा, धूप दीप नहीं बेदा बासा, कैसे पूज कर है तेरी आसा। मन तन अर्पो पूज चिरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन जियो के, पदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंतर मल निर्मल ने कीना, बाहर पेख उदासी, हृदय कमल घट ब्रह्म न चीना, काहे पया सन्यासी। परमे पुली रे जय चंदा, नैनी चीनिया परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया, किंथा मुंदा माया, भूम साण की पसम लगाई, गुरबिन तत न पाया। काय जपो रे काय तपो रे, काय बिलो वो पाणी, लख चौरासी जन्यो पाई, सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडल का पड़िया रे, अड़सठ काय फिराही, बद त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कान गिन गाह की पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मह जे मरे, सर्प जोन वाल वाले उतरे, अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे रहाओ। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता मह जे मरे, बेसवा जोन वाल वाले अवतरा, अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता महजे मरा,
सूकर जून वाल वाले अवतरै। अंतकाल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै, प्रेत जून वाल वाले अवतरै। अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै, बदत तिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाके हृदय बसै। गोजरी श्री जय देव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनो पिमंग सत्याद भाव रतंग, परमाद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्व गतंग। केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग, नंद नोत जस मरणेन जन्म जराद मरण पयंग। रहाव इच्छस जमाद पराभ्यंग जस स्वस्थ सुकृत कृतंग, पापूत पाव समभ्यं समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं। लोभाद दृष्ट पार गृहं जादे भेद आचरणं, ताज सकल दोह कृत दुर्मति पाज चकर तार शरणं। हर भगत निज नेह केवला हृदय

देवायो सास सपुटं पावपूत सर्वगतं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम सतनाम जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।

कृता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार अशांत मलेच माल पाए अशांत

0: पे जाए साला नी साला है नदियां पे बाहर सोमना जान समुद्र सा सरदार गिरी कुल नामनी
1: अंत न सुखी कहना अंत न करना देना अंत न देखना।

कैसे कैसे रत्न ढूंढूं, कितनिया पानी कितनिया पानी कैसे पास रहता, कितनिया सुखी नानक अंत।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख मूर्या अशंख मलेर मार पाए अशंख

0: पे जाए ए साला जी साला है इतनी सुंदर नदियां पे बाह पासों में जान समुद्र साथ करता गिरी कुल नौनी
1: अंत न सुनी कहना अंत न करने देना अंत न देखना।

संसार सदगुरु करबे चल सोए नानक हुकुम जी रती रुती थिती पा पौन पानी अग्नि पाता तिस विच धरती ठाक थी।

निरता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कलवट हृदय कमाए अशंख पापी पाप अशंख मूर्ख अर्थ रहे अशंख मरे तुम्हारे पाठ खाए अशंख निंदक।

आकाशवाणी ब्रह्मा भक्त सुहाग कलम कमल सुरेंद्र भक्त कमल कमल सिद्ध कमल कमल सृष्टि महाकमल वेद न पाइया पंडित दीजिए।